बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीव।

0: संवाद बहन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: सुंदर र समृद्ध गंडकी प्रदेश,
2: यो हो समुन्नत गंडकी रेडियो कार्यक्रम।
1: नमस्कार, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय गंडकी प्रदेश सरकार प्रेस रजिस्ट्रार को कार्यालय द्वारा प्रायोजित प्रदेश सरकार का गतिविधि नीति योजना कार्यक्रम लगायत समसामयिक विषय में नागरिक जानकारी दिने उद्देश्य तैयार पारिएको समुन्नत गंडकी रेडियो कार्यक्रम में यहां स्वागत छ। तपाई यो कार्यक्रम रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र पोखरा र एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ।
2: आजको कार्यक्रममा हामी गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत आन्तरिक मामिला, शान्ति सुरक्षा

को लाभ दी आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जिऊ।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज हामी सबैको साझा आवाज

0: Patagonia.
1: Extreme energy drink.
2: निकट माता दीदी बहिनी, विकट माता दीदी बहिनी, यो हो रेडियो दीदी बहिनी।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनोस् सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुले जियौ।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 7 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनोस सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट मा दीदी बहिनी, विकट मा दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी,